0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। आप देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी, ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ, अरब औरतों का, अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें,

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
2: हो गए।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जिसे लिस्टर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कौम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को के जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते है कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नीचे समझ आ रही कि वो कर क्या रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट की पार्टी की है, वो लगातार की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है, पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा वह जब मोडगाना खड़े हुए थे। और दूसरा ये समिया जो है गडीखेल विंस्टर की मुसलमान है और गडीखेल विंस्टर की क्या कहते हैं एक मोनली फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फर्कसिंग कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पे बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीनियर स्टम्पन जो उसकी कोलीग है समीर की, उसने भी लिया ऑल आउट। तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्त्री की तरह बैठेंगी पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फर्टेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगत, वो है एसएफ, वो है मुरगाना और वो है गडीखेल एवेंस्टर। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है वो मिस्टर हैं सुशील तो मुकद्दर के, पांच हैं एसएफ के, चार हैं मुड़वाना के और तीन हैं रेडिकल वेंचर के। पिछली बार 25 मिस्ट्रियां बनी थी, इस बार 21 मिस्ट्रियां बनी हैं। इस बार इनने कुछ मिस्ट्रियां काम कर दी हैं। उसमें से बिगेस्ट चेंज जो आया है और जो क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया है कि मेरा सोशल डेमोक्रेट के साथ तलक है, मगर उसको मैं मिक्स अप नहीं करता, मगर बिगेस्ट शॉक हमारे लिए ये आया है कि जो फेंस मिनिस्टर है उसकी पोस्ट चेंज की गई है और जस्टिस मिनिस्टर की, उन लोग उन दोनों ने बोटो सोटा कर लिया। उससे एनएलआईएसओ का और क्या कहते हैं कि ये है उनका आइडिया के मेडिफल्स ने अपना क्या कहते हैं अपना इफ्टा फेलियर पिक कर लिया, और अब इस पे भी काफी डिबेट चल रहा है पार्टी के अंदर कि
4: अदनान,
3: मेरे लिए
4: अदनान, अदनान, आप वेस्ट लाइन में रहते हैं और जो हमारे इंटरग्रेशन के मिनिस्टर बने हैं उसको वो यहीं से तलक रखते हैं वेस्ट लाइन से, और वो सोशल डेमोक्रेट के हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो उनकी जो बैकग्राउंड है, वो आए तो यूलैंड से हैं लेकिन यहाँ वेस्ट लाइन में रहते हुए वो फॉरनर्स के साथ उनके काफी रिश्ते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो इंटीग्रेशन की मिनिस्ट्री जो है, ये वुलेनिंग और इंटीग्रेशन, इसको वो संभाल पाएंगे और ठीक तरीके से वो इसको चला सकेंगे?
3: शाह साहब जो बहुत बुजुर्ग हो है ना, उसको मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि वो मेरे साथ ही होता था 2000 में जब हमने ज्वाइन की थी पार्टी। उसके बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ और उसके नॉलेज को भी मैं जानता हूँ। मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ से वो अपने दिमाग से चला ना तो वो क्या कहते हैं इस मिस्टेरियम को हैंडल कर जाएगा, कि उसके अंदर दो वजह है उसके लिए। उसके अंदर दो वजह ये है कि जो बैकअप है ना उसके लिए, जिस टाइम पार्टी होती है उसके अंदर उसके पीछे मच्छी चस्फाए होगा, वो परफॉर्मेंस वो है पार्टी का, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लर्निंग मिनिस्ट्री में, तो डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मौत को जो है ना वो वाइट मिनिस्टर है जो अभी तक जितनी सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट्स बनी है ना 2000 से लेके, वो उनमें शामिल है। और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो बड़ा मशहूर आपको पता होगा पोनियो रास्मुसन, वो उसका स्टूडेंट है, वो उसका स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल से वो फॉरेन मिनिस्ट्री को संभाल जाएगा। वो फॉरेन मिनिस्ट्री को इस तरह से संभालेगा कि मेरा जो मैं दाय तो नहीं कर सकता, मगर वो इस तरह से संभालेगा कि वो बैलेंस की तरह संभालेगा। वो इस तरह नहीं है कि वो जिस तरह बाकी सारे क्या कहते हैं हार्ड लाइन की तरफ नहीं जाएगा। पहले ही आप उसकी स्टेटमेंट देख लें तो उसने ये कहा है कि मैं जो क्राइम करते हैं, जैसे ये आप मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक टॉप 10 लिस्ट थी जिसके अंदर शॉकिंग पॉइंट था, जिसपे सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जिसपे बंदा लगा रहा है, और आज भी कल रात को भी उसकी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि उसको EU में भी मारने लगे हैं। तो मैं तो तौबा कर रहा हूँ कि उसकी EU पहले वो नंबर 2 पे छिवगी कर रहे हैं तो नंबर 1 पे हो गए तो क्या होगा इस मुल्क की हालत, आप खुद गेस्ट कर लें कि जब ओपन बॉर्डर होगा तो फिर तो जो है, तो वो मेरे ख्याल से वो हैंडल कर जाएगा।
4: जी, मेरा एक सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मीडिया डायरेक्टर भी हैं और कम्युनिटी के चेयरमैन भी हैं, राजा फूर साहब, वो भी सुन रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं। क्या आप बहुत ही नजदीक फ्यूचर के अंदर आप कम्युनिटी के जो कुछ लीडरान हैं, जैसे राजा साहब हैं, मियां मनीर साहब हैं, दूसरे जो सियासतदान हैं, इन लोगों की मुलाकात जो है कोशिश करेंगे कि मॉडर्न बुस्को के साथ हो, ताकि जो हमारी जो रहने वाले जो हम 70s से लेके अब तक यहाँ रहने वाले फॉरनर्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वुलेनिंग और इंट्रोगेशन के दरमियान, उसके ऊपर कोई वो हमसे बातचीत करे, तो क्या इसका कोई इम्कान है कि आप उनको टेबल पे लाने पे कामयाब हो जाएंगे?
3: राजा साहब, मैं कोशिश कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो हमें टाइम भी दे देंगे, और मैं ये इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं कमिंग डेज में मचियर से बात कर लूंगा, क्योंकि अब वो तो कूपर फॉर्मैन है और वो यहाँ सिटी में ही रहता है। मैं उसको एक मेल लिखूंगा कि हमारी कम्युनिटी है तो तुम कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोशिश अपनी तरफ से करेगा। और इंशाल्लाह ताला समर, अभी तो ये समर वेकेशन पे चले जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में वो डेफिनेटली जब वो अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी संभाल लेगा और अपनी क्या कहते हैं सारी सूरत हाल देख लेगा, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि वो आज ही काम पे शुरू हो गया हुआ है। और वो आज वो ब्रजल में है और दूसरा जस्टिस मिस्टर वो उधर है लुक्सम्बर्ग में। सो आप चाहेंगे तो हम कोशिश कर देंगे और कोई ना कोई मीटिंग जरूर हो जाएगी और आप अपना जो पॉइंट्स उसके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे वो मैं आपको बता दूं कि मैं उसको 2000 से सदी से जानता हूं, जब वो TSU का फॉर्मैन था और वो हर चीज को नोट करता है और हर चीज को देखता है। और आपको मैं ये भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो 2011 की जो हेलिचॉन स्मिथ की गवर्नमेंट थी उसके एक पीरियड में वो जस्टिस मिनिस्टर भी था, तो कोई वाकया हो गया था जिसके लिए वो डिसमिस्ड हो गया था, तो वो जस्टिस मिनिस्ट्री में भी रहा हुआ है और वो डिफेंस मिनिस्ट्री में भी रहा हुआ है। तो सर उसकी उसका क्या कहते हैं और पार्टी के अंदर वो फैंस का भी रहा हुआ है, सर उसका नॉलेज बहुत है, उसका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत है और वो एक अच्छा मिनिस्टर बन सकता है वो अपने पे रहे। ये नहीं है, उसमें एक चीज का फर्क बहुत है कि वो उस तरह जज्बे में नहीं आ जाता जिस तरह ये गास्पर स्टॉकलोन आता है, फर्क बहन आता है, उस तरह वो स्टेटमेंट्स नहीं देता वो, क्योंकि उसको पता अच्छा, होता है कि किस कम्युनिटी के। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि मैंने आज सुबह एक बंदे के थ्रू उसको एक मेल लिख दी हुई है कि ये जो वाकया हमारे हो रहे हैं मस्जिदों पे और उस पे, तो उसने मेरे उसको लीग ने कहा था कि हम उसको ब्रीफ कर देंगे और डेफिनेटली वो रابطہ करेगा हमसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि ये
4: अदनान मैं आपसे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक बात करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मजहबी जैसे हमारी मसाजिद हैं या सिनिकाल्स हैं यहूदियों के या चर्च हैं या दूसरी चीजें, ये चर्च मिनिस्ट्री के नीचे ये उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो कल्चर है कल्चर सेंटर्स है ये कल्चर दोनों के अंदर होते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर भी रजिस्टर्ड होते हैं और चर्च मिनिस्ट्री के अंदर भी होते हैं, क्योंकि जब आप उनको कहते हैं ना कि हमने एक सैली जो है वो बिल वेल्स है इसके अंदर रखा हुआ है या हम कोई अपनी फ्यूनरल्स वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन वो ऑफनली जो ये पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि क्या वो ऑफनली उनको मस्जिद की हैसियत हासिल होती है या कि वो एज ए कल्चर सेंटर होता है।
3: शाह साहब जो 70 से 80% है ना वो कल्चर सेंटर डेनमार्क में, क्योंकि मस्जिद की इजाजत लेने के लिए एक लैदा प्रोसीस होता है और एक लैदा क्या कहते हैं प्रोग्रेस होता है। और उसकी मोटी एग्जांपल यही है कि आप देखें हेलसिंग में वो मस्जिद बनाना चाहते थे रिवील मस्जिद, और आप देख लें कि उसकी कितनी मुसीबत पड़ी थी और कितनी क्या कहते हैं था। तो जो रियल रजिस्टिंग है ना जो मेरी नॉलेज में है वो यही है कि 75% जो है ना वो कल्चर सेंटर से रजिस्टर है, और कल्चर सेंटर की जो चीजें होती हैं वो कल्चर सेंटर के अंदर होती हैं, मगर हो सकता है कि वो मिस्ट्री चेक करी हो, क्योंकि मुझे याद है कि इसका एक एक, एक पता नहीं 2 या 3 साल पहले एक मिस्टर को आया था और उसके अंदर 3-4 मिस्टरों ने फिर इसका जवाब दिया था, क्योंकि वो जस्टिस मिनिस्टर भी था, होम मिनिस्टर भी था, इमिग्रेशन मिनिस्टर भी था और कल्चर मिनिस्टर भी था, अकिया के भी था, 5 थे मगर 3 के 5 थे वो इधर, तो फिर उन्होंने मिक्स करके एक जवाब दिया था। मगर होते ही कल्चर सेंटर जो कल्चर इन्वेंट है वो सारा कल्चुअल मिनिस्ट्री के अंदर होता है। और उसकी भी बात आप सुन लें कि वो इस वक्त वो उसके पास है, अब सीनियर स्टाम्प है जो है की ये मिस्ट्री उसके पास है, पहले थी याकब इंगल स्मिथ के पास, अब वो है सीनियर स्टाम्प के पास।
4: अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मैं थोड़ा सा उस पर तत्पर करता हूँ फिर मैं आपसे उससे जवाब लेना चाहता हूँ कि हमारे मोस्टली जो सियासी पार्टियां थी इलेक्शन में उनका नारा था कि हम पेंशनिस्टों को बहुत ज्यादा सहूलत देंगे, उसके बाद पानी जो है यहाँ पीने का 30% से लेके ऊपर तक जो है वो गंदा पानी है पीने का, हम उसके पीछे देखेंगे, और फिर जो है फॉरनर्स को, और ये वादा किया गया था कि फलस्तीन की आजादी और दूसरे ममालिक की आजादी के लिए जो भी वोट हासिल किए वो किए गए। क्या अब जो हमने ये हुकूमत बनते देखी है, ये जो इसको मैं पीडीएम की गवर्नमेंट कहता हूँ, सवाल ये है कि ये जो बनती देखी है

0: इसके अंदर मैं आपको बात बता दूं, पेंशन के हवाले से आपने बात की है, उसका एक कमीशन बोर्ड भी आएगा जो देखेगा कि पूरा पेंशन सिस्टम क्या है। उसके इनने सबसे पहला पॉइंट ये किया है कि जो सब जिनके पास सबसे कम पैसे है ना, उनकी 1000 पेंशन बताई जाएगी। ये मुझे नहीं पता कब बताते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं कितना। दूसरा ने ये किया कि जो आने फंक्शन है उसको भी 3000 फुट तक ज्यादा लेके जाएंगे, और उसके बाद एक कमीशन बोर्ड बनाएगा जो सारी पेंशन सिस्टम को देखेगा। ये जो बिल फैसफुली 2006 में बनी थी कि जिससे ये कहा गया था कि पेंशन बढ़ती जाएगी, वो रोक दी गई है। स्पॉट एवं फॉप वो भी आएगा, वो उसका क्या कहते हैं, कुछ लॉक इवनिंग है, वो बेस्ट वो भी कमीशन मेरे ख्याल से चेक करेगा, तो उसके बाद ही क्या कहते हैं देखा जाएगा। बादों में से देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो वादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो बिगेस्ट चेंज आएगा इसके अंदर वो है जो इंग्लिश लिस्ट ने बात की थी कि सैलरी जो है ना उसको मुफ्त किया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर। कैसे उसको मुफ्त किया जाएगा ये अभी हमें नहीं पता, इसका भी एक फॉर्म बनेगा। दूसरा इनका एक वादा था जो यंगस्टर के लिए लेके आ रहे हैं 22 साल तक, वो ये है कि ये जो जवान लड़के बच्चे हैं ना वगैरह, उनके लिए फ्री किया जाएगा बसों को ट्रेनों को, कि वो इस पे सफर कर सकें, तो वो क्या कहते हैं, पर उसके अंदर भी एक क्या कहते हैं फॉर्म की तरह चेंज आएगा। तीसरा इनका वादा जो इनने किया है वो ये है कि ये जो बेंजीन प्राइसेस है ना, इसके भी गौर किया जाएगा, और ये फॉर्म किया जाएगा, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ इसका क्या कहते हैं आ जाएगा। दूसरा इन ये लाए हैं कि प्रवास पैसा जो है ना वो 25% से 12.5% की जाएंगी, और मतलब कि वो एक किस्म की स्वीडन और नार्वे की जो नॉर्मल प्राइस है उस पर लाई जाएंगी, और फ्रूट जो है ना वो पूरा फ्री किया जाएगा। ये था रेड ब्लॉक की तरफ से, जो रेड ब्लॉक के कह रहे SF हो गया, हम सोशल
1: अदनान, ये
0: डेमोक्रेट हो
1: जो
0: गए।
1: आप बात बता रहे हैं, ये तो खैर जो को खाने पीने की चीज़ों पर मिलेगा, छूट मिलेगी। जो अभी जो इससे पहले आपको पता है कि रेडिकल वेंस्टा के जो वज़ीर बने थे मानुषरीन, जो कि गालबन 3 अक्टूबर 2011 को वज़ीर बने थे, और अब जून को जो है, 3 जून को जो है, ये समैरा नोवा बनी है, वज़ीर बनी है, जो मौलियात की बनी है। तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? वो अपना बैकग्राउंड तो उनकी, वो पंजाब से पंजाबी थे, वो इंडिया पंजाब से, तो समैरा जो है वो अफगानिस्तान से, उसके वालदैन आए थे, क्योंकि वो खुद यहाँ पैदा हुई हैं। तो दोनों इसी पार्टी में वजीर बने, तो आप बताएं कि मानुषरीन ने कोई काम किया था और ये भी कोई काम करेंगी?
0: सब मैं एक बात कहूंगा कि शमीजा पर मुझे थोड़ी उम्मीद है कि ये काम करेगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ना, जब से ये हुकूमत बनी हुई है ना, इसके साथ मुझे नहीं पता, गाड़ी के में जुहेर और ये सारे बैठे हुए हैं, उनको शायद दूसरा इसका विंकल का पता हो। मेरा जो इसके साथ तजुर्बा हुआ, जो मैंने चीजें देखी हैं इसके बारे में, ये है कि जिस चीज पे काम करना चाहती है ना उस पर ये काम कर लेती है और करती भी है। और इसका एक और बैकग्राउंड, इसका बहुत बड़ा फर्क है मानो सरीन से, ये गाड़ी खेल व्यवस्था की सारी इकोनॉमी पॉलिसी पे बैठी हुई है, और यही क्या कहते हैं उनकी की बंदा है, जिसने जब नेगोशिएशन होगी ना किसी मिनिस्ट्री में भी, लैसी जब अब कमूनों की पेशी गाएगी तो ये बैठेगी साथ, मार्थ लीको बैठेगा, मगर मार्थ लीको को उतना नहीं इकोनॉमी का पता जितना इसका पता है, और
1: सही।
0: इसका और ये डेफिनेटली बैठेगी। और दूसरा बात, इसका एक बहुत बड़ा स्टैंड है, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, एक नैना लड़की है वो बॉन्स 25, जिसका सारा पटाखा बज गया हुआ है, उसने इसको कहा था कि बंदे का जो मर्जी बैकग्राउंड हो वो बंदा चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि इसको ये कहा गया था, जो घोड़ा होता है ना वो घोड़ा ही होता है, और जो कुत्ता होता है वो कुत्ता ही होता है। और मैं आपको कहूं कि जिस तरह से इसने जवाब दिया था ना, और मैंने भी उस पर जवाब दिया था, मैं मुझे बड़ा सुनना पड़ा था उस वक्त, मैंने गाड़ी के इंस्टा को जवाब नहीं था, उनकी मैथ में ही था दिया, मैं रिपीट कर लूं, मैंने इसलिए दिया था कि ये बात गलत है, आप किसी की नस्ल पे ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट होती है, डेफिनेटली आप जानवर और इंसान को क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने दिन या जाती रही है ना माचलिको के साथ, और डिखेर वेस्ट ने जितनी चीजें अपनी लाई है ना उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप एक चीज देखे, सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने शायद देखा भी हो किसी पार्टी के अंदर, नहीं, ये आए भी इकट्ठे हैं

0: ये भी इकट्ठे हैं। ये देखे कि कितनी अच्छी बात है कि वो इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे, क्योंकि नजर आता था कि एक टीम है। और ये बात मुझे मार्चन ली को कि बड़ी पसंद आई है, इसने अपनी पूरी टीम है। और कल आपको मैं बात बताऊं, जब ये आए हैं मिस्ट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर से जाने वक्त, ये तीनों इकट्ठे आए हैं क्योंकि इनके अंदर एक सलूक है। ये मार्चन ली को और सिमिया का बहुत अच्छा सलूक है आपस, ये चाहे तो काम कर सकती है और हम इसको सपोर्ट करें ना एज अ कम्युनिटी, और ये काम करेगी मुझे पता है। इसकी पार्टी
1: ये
0: के
1: हम
0: अंदर
1: बुलाएंगे,
0: इसको
1: इसको बुलाएंगे अदनान। ये बिल्कुल यंग आई थी और इसने देखे, इस वक्त हमारे बड़े बड़े ऊंचे नाम थे, नदीम फरूक था, अपना अपना अब्बास रिजवी थे, सब थे रेड के वंशा में, मैं भी था, लेकिन ये बिल्कुल नई आई थी और इसने सबसे पहले जो काम किया वो ऑफिस का काम शुरू किया रेडिकेल रेंसा के अंदर। और ये उस वक्त विकास के ऊपर काम कर रही थी और इसने वहां पे सारी सारी रात बैठ के तो इसने काम किया, और साथ ये अपनी एजुकेशन भी ले रही थी। तो इसने जो मेहनत की है, इसने बहुत पुराने लोगों को पीछे छोड़ के रेडिकेल रेंसा में, और इसने अपना एक मकाम बनाया। तो मैं आप लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये मेहनत होती है जो रंग लाती है, और हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जो भी है, पहले जो मुसलमान नाम आया एज ए मिनिस्टर, पिछली दफा भी हो जाना था मीनू सरीन की जगह, लेकिन वो जो वजूहत बनी उसका मुझे पूरा इलम है, वो इस वक्त अब पुरानी बात है, उसको को ओपन करने अच्छी बात नहीं, लेकिन ये उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, देखे जितने भी बातें इलेक्शन में की गई थी, उनका सिर्फ 12% जो है, जो मैं देख रहा हूं या जो तजिया नगार देख रहे हैं, वो 12% जो है एप्लीमेंट होंगी। ये जो सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह जैसे आपने बात की है, ये तो अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी, और लोगों की हेल्प भी जो है मेडिसिन की आगे पीछे, वो भी इसके ऊपर सोशल डेमोक्रेट जो है वो थोड़ा सा काम करेगी, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट्स ने अपने पांव जो जमीन पे रखे थे, वो जलजला जो आया था पिछले पीछे, वो उसकी वजह से वो थोड़ी सी कांपी है, और अब उसको चाहिए कि वो बाजमात दोबारा वापस आए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे कम्यूनों के अंदर इस वक्त ये सुना जा रहा है कि इनके पास बजट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, और अगर इनके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो ये जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, ये जो सरमाया बिल्डिंग्स के अंदर लगाया जा रहा है या रोड वर्क्स के अंदर लगाया जा रहा है, अभी आपको पता है कि इस दफा जो एल्बस रोड की एक अखबार है, उससे आपके आपके पास भी वो कटिंग है, आपने बात मुझसे की थी, उसके ऊपर कुछ स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो क्या आप जरा ये मंजरे आम पर आ सकते हैं कि भाई हमारी कम्यूनों में जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं, वो आम आदमी को ये जो कानून बन रहे हैं या जिसके ऊपर वो बैठे हैं, कौन कौन सी उन्होंने अपना मतलब कौन कौन से वो जो है उन्होंने पोस्टें ली हैं, यानी कि आप हैरान होंगे कि मैं कल कम्यून के अंदर गया तो मैंने वहां पूछा कि मैं बॉम्ब मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, तो कहते हैं जी आप यहाँ नाम रखा जी, हम आपको कहेंगे। मैंने कहा उसका डायरेक्ट टेलीफोन नंबर उसकी चाहे, तो वो कहने लगे जी वो जो उसका तो डायरेक्ट टेलीफोन नंबर ही नहीं है। तो ये मुझे हैरान हुई है, इस पे आप बात करें जरा, ये बताएं लोगों को
0: एक
1: इन्फॉर्मेशन
0: बात,
1: क्या करें।
0: राजू साहब मैं एक मिनट बात करता हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब ये जो हरिकेल वेंसा की समीय की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये इसकी मैं एक आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ जो मुझे इसकी पसंद आई थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी इसके साथ ना नवंबर में, जब मैं इसकी नवंबर और ये अभी मेरी इसके साथ जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो ये एक जगह पे आई हुई थी और वहां पे हम लोग भी थे अपने कैंडिडेटों के साथ, और इसकी बहुत अच्छी बात की और हमारी बात की चल रही थी। तो मैंने इससे, मैं उधर खड़ा था, मैं दूसरी साइड पर खड़ा था, मुझे ही तो पता ही आई हुई है, क्योंकि इसको पता था कि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ और मैं उनका टीम का हिस्सा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने इससे एक सवाल किया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि ये देख ये जो चीजें चाह रही हैं, बड़ा मुश्किल हालात है, इसने मुझे वही आपकी बात है, जब आप रूटीन की तरफ आपके सवाल की तरफ आते हैं तो यही मुझे इसने कहा, कहती है मसला ये हो जाता है कि हम लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं ना कम्यूनों के अंदर और हमारे रेस्पेक्टेंट चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा को ये नहीं मालूम होता कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलनी होती हैं और कैसे चलने होते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको शाह साहब बता दूं, हम अभी एपिसोड में बैठे हुए हैं और हमारे जो आपकी बात सही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है और यही एक फैसला होता है और इसका होता है। पिछले साल 2025 का जो बजट हमने बनाया था ना, और जो जिसके बारे में था वो हमें फूलियां ना मिलती है जो होती हैं लेंस कम्यूनल्स लेंस वाइन से, तो हमारा बजट पूरा नहीं था ना। और मैं आपको यही कहूं कि अब इनकी जो कोशिश है कि यही लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह ये स्ट्रक्चर बन रहा है, हर जगह क्या कहते हैं सड़कें खुली हुई हैं, पता नहीं बंदा जा रहा एक जगह आता है तो पता चलता है ये बंद है, ये इनकी ये पता नहीं ये भी पॉलिसी है और क्यों है ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2000 अभी तक तो हमें यही पता है कि 2027 के जो बजट्स हैं वो बेस्ट टाइम की कम्यूनों के, अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मिसाल नजर नहीं आ रहा, मगर अब ये क्या कहते हैं ये जब गवर्नमेंट बैठेगी और कम्यूनों ने स्लैंस फाइनिंग और वैक्यूम्स के बजट बनाएगी तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है और कितना क्या कहते हैं कम्यूनों के अंदर चेंजेस आते हैं,
2: असल
0: क्योंकि
2: बात तो अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनियल निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने जो मेला लगा हुआ जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार्क करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
0: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ, एक दिन तो मैं खुद फंसा हूँ, एक दिन तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठे हुआ है सोशल डेमोक्रेट को मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोगों कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं अब कोशिश कर रहे हैं अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो, कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हो आप ये, मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल देना। और ये एक मसला है कोपनहेगन के अंदर, काफी मसला है, और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सिकंदर भाई
2: नहीं, आप
0: हो,
2: ट्रांसपोर्ट के
0: कासम
2: वजीर से भी तो बात करें ना, असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं जो है ना, वजारतें ले लेते हैं तो इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
0: राज साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना, लोकल जो होता है वो कमून के हवाले में होता है, वो कमून ने खुद क्या कहते हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। और जब जितनी देर तक कम्यून ही सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ बड़ी होती हैं। कोपनहेगन में मसला ये है कि कोपनहेगन के अंदर एक पार्टी है, आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं, उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे बसों में ट्रेनों में ये घुसे, और वो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी, 2025 में भी, 2021 में भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे वो, तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा क्या कहते हैं होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी क्या कहते हैं वेयर अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उनने ये क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्टी बनाई जाए तो क्या कहते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोपेनहेगन के इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं ये कुछ दफा ब्रॉनबी में मैंने देखा मैचों पे और ग्लोव तो कुछ देखा और मैंने पेबिनसलोन में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्हें बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं माजा चाहता हूँ, मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा। मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि आपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम जब हम पता चलेगा कि मॉडल एसोसिएशन कैसे
2: ज़रा यहाँ सिस्टम से काम होता था। अदनान आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल वेंस्टर के ओलो ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
0: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट जो उसका उसकी पार्टी का वो बैठेगा, वो उतनी देर तक उसने ये इसलिए। और राजा साहब ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें थी मेरे ख्याल से उनके पास, वो आए थे अंदर 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर क्या कहते हैं फिर उनके तो काम का लोड होगा ना दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उनका आइडिया अच्छा है और एक मोटी क्या कहते हैं एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मैचियस चेस्लाई, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के आया उधर बादशाह के पास, तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस, और पैदल चल के जब गया ऑफिस तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो, तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा सुबह, आपको बान की बात होगी कि वो आज सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया,
2: इसलिए कि उसको गाड़ी पे जाए तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
0: नहीं, पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग है अंदर पार्लियामेंट के अंदर। वो कहते हैं मैं क्यों जाऊं, कहते हैं मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत ही इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है। वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिनिस्ट्री का काम करूंगा, जब मैं कोपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम करूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा।
2: तो चलिए अदनान आते हैं, शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके?
0: सब देखे नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना तो एब्रिसलोन का जो एब्रिसलोन से बंदा निकल गया है, रहता मैचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो हडखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्सलोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्सलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्सलोन से। क्यों नहीं आ सके?
1: नहीं अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम समाज करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी असूली तौर पर, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की डॉट सीरत सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट आया वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज, आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, ग्रुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
2: अदनान, इसमें अगर आप आजाद कर दें, साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशन से करते हैं।
0: ऐसा साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो ओहदे लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन, वो दो हिस्से में होती थी रैक्यूम, अब वो एक रैक्यूम में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दो तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। कहा तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं चार साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुबा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में एक जॉब होती है ना वो इसने तीन चार मिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको बात कर देता हूँ, हमारी बात हो रही थी कम्युनिटी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि दो या तीन साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री में तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये माचन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको लिया, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, किसकी मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है, और आपको उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों प्यूओ में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
2: शाह साहब आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
1: ये अदनान आखिरी चीज बात ये है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपसे रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलके उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमैरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं है कि वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट रेट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी, बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने, हाई स्टार ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने रابطे ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने रابطे किए और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से रابطे करूंगा और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम एक साल पहले होता तो तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो, हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिए कि लोगों की इतनी इज्जत होगी है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं, मुझे गाय पूछते हैं, मुझे कहते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
2: नहीं मेहरबानी आपकी, आप टाइम निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया आपका कभी भूलूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी बांजा है, मेरी बेटी है, वो जहां जाते हैं वहां वो यंगस्टर पूछते हैं तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है, इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं अभी तो मैंने देखा नहीं है कुछ
1: यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे बॉडी सेल्स के बारे निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी मैं यही चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ्फुज मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया, क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ ये रास्ता है राजा साहब, देखिए वो जो जो दो दो दो अलहदा चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना वो ये था कि जब आप एक बच्चे गलत काम करें ना बहुत तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है, मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक, एक बात कर देता हूं, मैंने ये अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चाह साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे ट्रांसफर के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटरग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो
2: चले, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ।
1: अदनान बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और अजीज शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का, हम लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको,
2: अल्लाह
1: हाफिज।
2: बहुत शुक्रिया शाह साहब, हम शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप सब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
1: जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को और शाह साहब जो है वो सवाल जवाब की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।